0: सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8 मेगाहर्ज साहिनो समय सूचक अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो 8:12 PM
1: आर्थिक वर्ष 2083-84 को मौद्रिक नीति को मसौदा तैयार आज वा भोलि समूह में सार्वजनिक करने तैयारी हर्मुज में मिसाइल आक्रमण ईरान अमेरिका इजरायल बीच में युद्ध चर्किने संभावना नेटो को सम्मेलन में पूर्व संध्या में कितना रूस का आक्रमण मुंबई में भारी वर्षा विद्यालय कॉलेज बंद पुणे में पहिरो जाँदा 4 को मृत्यु र अमेरिकालाई पराजित गर्दै बेल्जियम विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा अमेरिकाको ऐतिहासिक सपना अधुरै पोर्तुगललाई 1-0 पराजित गर्दै स्पेन क्वार्टर फाइनलमा कतारमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास नलिने रोनाल्डोको दावी

तुम से राज भैरवी सखा खिलला क्यों बाड़ोले कसले समझी हो खिलला क्यों बाड़ोले कसले समझी हो।

0: सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8 MHz
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 3 बज्यो 8:30 PM